0: धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव पार्वती पते हर हर महादेव गंगा मैया की अविश्वनाथ की अन्नपूर्णा की उदीयमान सूर्य की समस्त देवी देवताओं की समस्त संत महात्मा ऋषियों की हर हर महादेव।
1: हेलो,
2: yeah.

आपके सामने हमारे भारत का संविधान गंगा जी का एक रत्न है, मुझे भी रत्न गंगा भागी व्यक्ति गंगा भागी व्यक्ति निर्मल बने करता हमारा धार समाज भारत को हमारे देश पवित्र पावन भूमि का पुण्य सभी के विशुद्धता अवतारणी माता संसार का अवतारणी माता जीवन को आधार जीवन को आधार गंगा भव गंगा भव